0: क्लास तुम काफी
1: सूतु सूत सानने रजगले मंदे मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम पिछले तम से दिखूं तुम चला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे टीम म्याना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वह ये जन के जान मंदी तुम्हारे माता का इसके आराम ये जन के रिस्क सां ना जब फिक्री जन मु उतनी मां ने किस दिन दिसाना को दे मनारा का ना सेमु जान ले फिर दिसाना दे वह मनारा का नहीं दे ये दिमरा ना जब फिर तो सोम तांस मिरी जाने सें जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु फटारा कौन सा ये ले फिर ना काफी ना जाने मासूत सा उन्हें चार ले तीन रोपिये तक के नंबुला चुनाये ना जाने
3: ले सूट सान ले वचने मुझे मादागास्कर सुनना ना को ले सूट तुम आते थी ये सेना वातार पे सूट जिस चीज़ माफ़ चले चान सूट सान से ले सूट पे ना काफ़ी ना टीम या ना कर सारे तुम आते थी देवाला सा सीज़ हम सोचो ची मोलाला सा चेक नहीं सेंच साझा मापा ये रे ना जब यान जमाना नहीं मापता ना जरा कैसे ते तांज ना तुंगा
4: Havana Diego nakane Chileara de Fernane Diego arakan fanrino teiteta Madagascar de sutun mitsan ie fankerezana oazireo de mafinasitra ny ataonareo fa tena hoe makafito koa antilosy mamitsika ty izay tena hoe tsy manantsaly ty izany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokana tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.